ना मयूरा मा सिवा ले कर हुआ मा परा कई वे करो कई खुपन हेरिया का के खल हेरे ओले आलो पोला के लंथेने आहे विन्ये आई वा कुटु खान ला हा यो पोले कर के मय टावे मा सिका पियानो के वा हयाले आ यो ने के वे यु मा से हा का रों वे आम नीरा यु का रों वे सिन रो मेरो कोई किन्ना आ मेरो खानो न्याने नेमो आकेला वो बहाने आई वो वेला वेला कुंकि लाथनी वाते ओके लाथ मीत की थे नो वेला वेला वाय होए अना मने मनो वी बेताला कोनु लेलु अमुरु मुठो वेला वेला कोन कुशेरु ओरु टुआ मिया नो क्वा किना वेकेला क्वा या मिया कगिरुन ना रहिरे के वो नो पहेरे ने मसि पनो पेंता हुनी मुनी ओ तोरा जी 40 मिनुतो Rata wa profesor lai